0: एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयता प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल राष्ट्रिय सभया एतद् विक्रमवर्षीयं विनियोजन विधेयकं बहुमतेन पारितीकृतं वर्तते। अर्थमन्त्रिणा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विधेयेन प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तं एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं पारितीक्रियताम् इति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्ताव बहुमतेन पारितीकृतोऽस्ति। अनेन सैव संघीय संसद द्वाभ्यामेव सदनाभ्याम् आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययकं पारितीकृतं वर्तते। एतत्पूर्वं राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशे विनियोजन विधेयकम् आधृत्य विभिन्नेषु शीर्षकेषु उत्थापितानां प्रश्नानाम् उत्तरं सम्बद्धैः मन्त्रिभिः दत्तम् अस्ति। उपवेशे विनियोजन विधेयकम् आधृत्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः, ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्यापूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कृषि वन पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी, पूर्वाधार विकास मन्त्री विकास लम्सालश्च स्वस्व मन्त्रालयानां विषयेषु सांसदैः उत्थापितानां प्रश्नानां उत्तरं दत्तवन्तः। राष्ट्रियसभाया ह्यस्तनोपवेशेन एतद् विक्रमवर्षीयम् आर्थिक विधेयकं राष्ट्र ऋणोत्थापन विधेयकं च सर्वसम्मत्या स्वीकृते स्तः। उपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले विधेयेन प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तं विधेयकम् आधृत्य विचार्यताम् इति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः सभया स्वीकृतोऽस्ति। प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तम् आर्थिक विधेयकं राष्ट्र ऋणोत्थापन विधेयकं च आधृत्य परामर्शं दातुम् इच्छुकैः सांसदैः राष्ट्रियसभायाः विधेयकशाखायां परामर्शनानि पञ्जीकारयितुं शक्यते इति ज्ञापितम् अस्ति। राष्ट्रियसभाया ह्य उपविष्टेन द्वितीयोपवेशेन प्रतिनिधिसभातः ससन्देशं प्राप्तानि चत्वारि विधेयकानि प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितौ प्रेषितानि वर्तन्ते। राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेशः स्वो बृहस्पतिवासरे दिवा सपाद द्वादशवादने वस्ता। नेपाल राष्ट्रकोषेण ऋण प्रवाहं विस्तार्य आर्थिकवृद्धौ सहयोग प्रापणस्य लक्ष्येण सह आगामिनः आर्थिकवर्षस्य मौद्रिक नीतिः सार्वजनिकृता वर्तते। नेपाल राष्ट्रकोषस्य अधिष्ठात्रा विश्वनाथ पौडेलेन मौद्रिक नीतिं सार्वजनिकृत्य आर्थिकवृद्धौ सहयोगं प्रापयितुं शिथिल मौद्रिक नीत्यै नैरन्तर्यं प्रदत्तमस्तीति उक्तं वर्तते। अधिष्ठात्रा डाक्टर पौडेलेन मौद्रिकनीतेः क्रियान्वयनेन आगामिनि आर्थिकवर्षे नैजक्षेत्रे प्रतिशतम् एकादशभिः अङ्कैः ऋणविस्तारो भविष्यति। मुद्रास्फीतिः 0.75 अङ्केषु सीमिता भविष्यतीति च अनुमितम् अस्तीति सूचितं वर्तते। अधिष्ठाता डाक्टर पौडेलः सर्वकारेण प्रस्तुतेन आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययविवरणेन आर्थिकगतिविधौ सुधारो भविष्यति, वैदेशिकमुद्रायां पर्यटने सार्वजनिकव्यये च अतिरिक्त तरलतायाः प्रवाह तरलतायाम् अतिरिक्तं बलसर्जनं च न भविष्यतीति च हेतोः शिथिलतायै लचिलायै च वा मौद्रिकनीत्यै नैरन्तर्यं प्रदत्तमस्तीति स्पष्टीकृतवान् वर्तते। मौद्रिकनीत्यां ऋणोद्योगानां कृते ऋणप्रवाहस्य बलसर्जने विद्यमानानां ऋणीनाम् उत्थानस्य च प्रस्तावः कृतोऽस्ति। भूटानदेशस्य कृत्रिमशरणार्थिप्रकरणे वर्षत्रयात् पूर्वं पञ्जीकारितस्य अभियोगस्य सन्दर्भे काष्ठमण्डपजनपदन्यायालयेन सर्वे प्रतिवादिनः दोषिणः निर्धारिताः वर्तन्ते। न्यायाधीशस्य तेजबहादुर खड्काविदस्य न्यायपीठेन प्रतिवादिनः पूर्वोपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तात्कालिक गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा, तात्कालिकस्य गृहमन्त्रिणः रामबहादुर थापाविदस्य सुरक्षा परामर्शदाता इन्द्रजित राई चेत्यादयः सर्वेपि आरोपिणः दोषिणो निश्चिताः वर्तन्ते। न्यायपीठेन दोषिणां कृते दण्डनं निश्चेतुं न्यायपीठस्य समक्षं परामर्ष्टुम् आदिष्टं वर्तते। राष्ट्रिय परीक्षा समित्या एसईई नाम्न्याः गत विक्रम वर्षीयायाः माध्यमिक शिक्षा परीक्षायाः श्रेणीवृद्धि परीक्षायां 66.64% प्रतिशतं विद्यार्थिनः उत्तीर्णाः वर्तन्ते इति ज्ञापितम् अस्ति। समित्या ह्य पूरक परीक्षायाः परिणामं प्रकाश्य परीक्षायां 83,000 23,500 च विद्यार्थिनः उत्तीर्णाः सन्तीति ज्ञापितं वर्तते। परिणामे असन्तुष्टैः विद्यार्थिभिः स्व आषाढस्य 25 दिवसात् 31 दिवसं यावत् पुनर्योगस्य उत्तरपुस्तिकायाः पुनः परीक्षणस्य च कृते आवेदनं दातुं शक्यते इति परीक्षानियन्त्रकः टुकराज अधिकारी असूचयत्। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहस्य ऐषयिक विकासकोषस्य अध्यक्षस्य मासातो काण्डा इत्यस्य च मध्ये ह्यो मेलवार्ता सम्भूतास्ति। नेपाल सर्वकारस्य ऐषयिक वित्तकोषस्य च मध्ये 60 वर्षेभ्यः जायमानं विकास सहकार्यम् अतिरिक्तं सुदृढं विधातुं प्रधानमन्त्रिणा शाहस्य ऐषयिक विकासकोषस्य अध्यक्षस्य च मध्ये सम्भूतायां वार्तायाम् उभाभ्याम् अपि पक्षाभ्यां पारस्परिक सहकार्यस्य कार्याय नैरन्तर्यं प्रदातुं प्रतिबद्धता व्यक्तास्ति। तदवसरे जल विद्युत क्षेत्रं पर्यटनक्षेत्रं च नेपालस्य अर्थतन्त्रस्य मेरुदण्डत्वेन अग्रेसारयितुं पर्यटकीय मार्ग पूर्वाधार निर्माणे सहकार्यं कर्तुं च द्वयोः पक्षयोर्मध्ये समीचीनं विमर्शनं सम्भूतमस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन आगामी दिवसेषु सुशासनस्य पारदर्शितायाश्च माध्यमेन नेपालस्य विकासस्य कार्यम् अग्रे गमिष्यति इति विश्वासः व्यक्तोऽस्ति। इति समाचारः।
1: डाक्टर साहब नमस्कार। मेरो बच्चालाई त ठिक नै भएन भने दुई पटक औषधि पसलबाट एन्टिबायोटिक किनेर खुवाइसके, कुनैले छोएन।
2: चेक जाँच नगरी डाक्टरको सिफारिस बिना नै एन्टिबायोटिक किनेर खुवाउनु भएको हो आमा?
1: हो डाक्टर साहब।
2: हेर्नुहोस्, एन्टिबायोटिक प्रतिजैविक औषधिको समूहमा पर्छ। यस्ता प्रतिजैविक औषधिहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने अवस्थालाई प्रतिजैविक प्रतिरोध अर्थात् एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स एएमआर भनिन्छ। औषधिको गलत, अनावश्यक वा अपुरो प्रयोगले यो समस्या निम्त्याउँछ। ब्याक्टेरिया, भाइरस, ढुसी वा परजीवी जस्ता सूक्ष्म जीवहरूको संक्रमणको उपचार गर्न प्रतिजैविक औषधिको प्रयोग हुन्छ, तर यी औषधिहरूको गलत र जथाभावी प्रयोग ठूलो चुनौती बनेको छ। तपाईँले जस्तै चेक जाँच नगरी आफू खुसी प्रतिजैविक औषधिको सेवनले यो प्रतिजैविक प्रतिरोधको समस्या अहिले मेडिकल साइन्सलाई नै चुनौती बनेको छ आमा।
1: हो र डाक्टर साहब, अब चाहिँ म आफू खुसी प्रतिजैविक औषधि खुवाउँदिन पनि खाँदिन पनि।
3: याद गरौँ, सामान्य रुगाखोकी वा फ्लू जस्ता भाइरल रोगमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगरौँ। अनावश्यक प्रयोगले जीवाणु झन बलियो बन्छन्। आफू खुसी एन्टिबायोटिक सेवन नगरी चिकित्सकको सल्लाहमा मात्रै खाऊ। सही औषधि सही मात्रामा पूरा अवधिसम्म र सही तरिकाले मात्रै प्रयोग गरौँ। प्रतिजैविक प्रतिरोध रोक्न सबैले हातेमालो गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

जसलो पाथौ नेपाल सम्बचिन्छ सब पी खुद तसलगा अष्टमी थो रेडियो नेपाल ख आने नादिस जिरु विपाखे नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय सभा मेघ सङ्घ बैठक विनियोजन विधेयक 2083 बहुमत पारित अगुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने प्रतिनिधि सभा सहसना नपाउगु विनियोजन विधेयक 2083 यता पारित यामा धका न्यवया दिगु प्रस्ताव सभासँग बहुमत पारित जुगु राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालङ घोषणा याना दिगु ख। थोनापा संघीय संसदीय निगु सदनसँग वैगु आर्थिक दया बजेट पारित जुगु ख। थोयान्य राष्ट्रिय सभा विनियोजन विधेयक दथिय सलसन लोङ्गु विशेष लिसविया दिसे अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ने आर्थिक सुधार सुशासन पूर्वाधार निर्माण सरकार या ध्वाथुक लम्पु पिहा वोगु धया दिगुदु। बैठक विनियोजित छी सांसद लोङ्गु नेसालिस बियादिसे अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले शासकीय सुधार या नीति घोषित सच्ची धल जाजो मध्ये चेन हेगु फुटी निगु प्रतिशत लम्पु पित हगु धया दिल। अर्थमन्त्री डाक्टर वाग्ले सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहसँग भिङ्केता सरकार प्रतिबद्ध जुयाको नेथना दिसे कर्मचारी तिएको कार्यक्षमता उपोक्यता व तनाव व्यवस्थापन नीति योग ध्यान व आरोग्य ज्याजो तेता निरन्तरता कथा न्याजाकीगु बचाउ ब्यादिगुदु। थोया झोले गृहमन्त्री सुदन गुरुङ गृह प्रशासन याता परम्परागत सुरक्षा निकाय संजक सीमित मत स्यासेन लाइगु शान्ति विकास सुशासन हो समृद्धि या लिधनसा या कथा न्याजाकेगु संकल्प याना न्याजना चनागु ध्यादिगु खसा राष्ट्रिय सभा या बैठक विनियोजित छन्दथिया लोङ्गु सांसद तेसा लोङ्गु नेस अलिस बिया दिसे मन्त्री गुरुङ गृह प्रशासन आयागु ज्यास जनता तपाईँको अनुभव याइगु याना सुरक्षा सुशासन व निष्पक्षता या सेललाई गुलिचो खने दैगु धया दिल। वेकल सुकुम्बासी व्यवस्थापन कमजोरी जुगु दुसा भिङका न्याज्यागु बचना पापङ्का दिगुदु। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल नेपाल सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता व राष्ट्रिय हितता चोछासे सरकार सन्तुलित कूटनीतिक अवलम्बन याइगु बचना पापङ्का दिगुदु। थोय झोले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ बजेट पाखे ऊर्जा लगायत आर्थिक रूपान्तरण या मुख्य लिधनसा कथन स्वीकार याना विद्युतीय पूर्वाधार या विकास व प्रवर्धन याता मु कथन थ्या बिया हिजागु बचन बिया दिगुदु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी उत्पादन उत्पादकत्व व लजगा बोलाङ केगु नीति सरकार क्रियाशील जुया चुनागु धया दिगु दुसा। थोए जुले कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी वैगु आर्थिक दया बजेट रासायनिक सा आपूर्ति कृषि बिमा तु किसान यता बिग अनुदान प्रारम्भिक सा उत्पादन नापाया प्रोत्साहन याइगु याना ज्या भला बो थलेगु नोचु पङ्का दिगु खसा। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साना सरकारमा भ्रष्टाचार या व्याख्या युपायाना ज्याखे लिपा लाकु लिपा लाका चोङ्गु लिताना भ्रष्टाचार कथङ्कया कानुन देखेता सनागु धया दिगुदु। राष्ट्रिय सभाया मेगु बैठक कने झिन्नीता इजुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु गोसादु। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सहाय राजनीतिक सल्लाहकार असीम सहायसम्म जकोते संविधान संशोधन बहस पत्र देखेता निसङ्गु कार्यदल प्रतिवेदन चुगु ज्यासिदेत सङ्गुदु। सरकार निकगु खुसी तङ्गु म्यादुने कार्यदल थो प्रतिवेदन देखेता प्रधानमन्त्री शाह नापा दुत बिगु याना ज्या सिधेता शङ्का दिगु ख। संविधान संशोधन या बहस पत्र देखेगु ज्याखे लिपातक बोती कापिन छु राजनीति दल अन्दास असहमति पोङ्कुसे कार्यदल तोतगुदु। कार्यदलले बोती कापी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जनता समाजवादी पार्टी जसपा व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा थोए असार 22 गते सामूहिक पौ छोसे

थपिङ कार्यदल या बैठक बुतिक्या मफैको जानकारी याकगु कार्यदल सुचाउ बिगुदु। नेकपा लोसपा व जसपा कार्यदल बसपत्र दिएको बोले संविधान या प्रस्तावना व आधारभूत मू मान्यता मचोसे प्रतिबद्धता यागु सरकार प्रतिबद्धता पङ्कगु सरकार या मागु छुन्छौँ विशेषण छु गुली हुने संविधान संशोधन या मागु ख वो सिधेका चुएता माग्यागुदु। नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा प्रवाह तव्याका आर्थिक वृद्धिसँग ग्वाली ठेङ्किएको आज नापा वैगो आर्थिक द 2083-84 या मौद्रिक नीति पिथङ्गुदु। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डाक्टर विश्वनाथ पौडेल हिग मौद्रिक नीति सार्वजनिक याना दिशा आर्थिक वृद्धिके ग्वाली ठेङ्किएको याना मौद्रिक नीति या त मध्यक हजियाकेको ध्याया दिगुदु। गभर्नर डाक्टर पौडेल मौद्रिक नीति छेला बुलाउ वैगो आर्थिक दया निजी लगापाखे झिन्छगु प्रतिशत कर्जा तब्याइगु व मुद्रा स्फीति यागु फुटी यहाँको प्रतिशत सीमित जोइगु ध्याया दिगुदु। गभर्नर डाक्टर पौडेल सरकार हगु बजेट आर्थिक गतिविधि भिनिगु व तरलता खपत जुसे वनिगु जुसा रेमिटान्स पर्यटन आय सार्वजनिक खर्च तेस अझ उपतरलता प्रवास जुया तरलताके उप दबाव मलाइगुली लचिलो मौद्रिक नीति या त मटिक झ्याकेगु बचा ब्यादिगु खस मौद्रिक नीति संस्थागत ऋण या मनुतेगु जमानी काइगु व्यवस्थाके छक्का असीमित दायित्व बोलङ्कीगु कुत या त चिका म सिबे म मनु त हाकुकु सूचीसँग दैगु याना नीति जोनागु गभर्नर डाक्टर पौडेल जानकारी बियादिगु ख। अध्ययन मौद्रिक नीतिसँग रुग्ण उद्योगीय निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन याइगु दबापे दुगु कर्जा पुनस्थान याइगु नापा उपकरण त प्रस्तावना याना तगु दुसा यानासँग मौद्रिक नीतिसँग सर्वसाधारण निक्षेप कर्दा ऋणी व बैङ्कको वित्तीय संस्था नापाया फुक्कसियाता बलाकीगु याना नीतिगत सुधारे ब बियागु गभर्नर पौडेल जानकारी बियादिगुदु। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले वैगु आर्थिक दया नीति धागु इले राजस्व या आज क्यागु याना प्रभावकारी कार्य सम्पादन या त भन्सार विभाग व आन्तरिक राजस्व विभाग या महानिर्देशक या त उज ब्यादिगुदु। भन्सार विभाग व आन्तरिक राजस्व विभाग या हुमा महानिर्देशक पी एमलाल भूषाल व डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल व भन्सार विभाग या उपमहानिर्देशक नियुक्त सहसचिव प्रेम प्रसाद आचार्य या त ज्या भाला कघ्यान्य अर्थमन्त्री राजस्व आज क्यागु याना पूर्ण समर्पण नापाइ ज्या यायता उज ब्यादिगु ख। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले भन्सारो राजस्व प्रणाली या त सूचना प्रविधि नापा स्वाना पारदर्शी देखे त उज ब्यादिगु वैकया सचिवालय ध्याया दिगु ख। भन्सारो कर आमदानी उपका देय आय सेला के त पिने या ऋण या परनिर्भरता म यागु थगु सामर्थ्य स देय विकास पला छिगु अर्थमन्त्री या थापु ख। अर्थमन्त्री डाक्टर वागले मातहत्या निकायसँग महामुदुगु ज्याइआइपी कर्मचारी त्यता निर्मम जुइता व इमान्दारीपूर्वक ज्याइआइपी कर्मचारी पिन्ता प्रोसा न्यायता इनापेना दिगु दुसा थोए असार 18 गते चोङ्गु मन्त्री परिषद बैठक वेक या त अर्थ मन्त्रालयसँग सर्व यागु ख। नुगु ज्याभला कामा सोमहतल सचिव तेस मन्त्री या उजस इमान्दारी कथ ज्या यागु बचना पङ्का दिगु ख। ये जिल्ला अदालत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणे पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राय माझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे नापा झिङ्यामासित थिति कसुरे दोषी ठहर यासे फैसला न्याङ्कगुदु। न्यायाधीश तेजराज खड्का न्यायाधीश तेज बहादुर खड्का एजालसँग मिग उमिता दोषी ठहर यासे सजाएको छिगु नीति दुतबीगु फैसला यागु जिल्ला अदालत या सूचना अधिकारी शिव खतिवडा जानकारी ब्यादिगु ख। 2080 जेठ 10 गते पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री खाँड पूर्व गृह सचिव पाण्डे नापा सुइमा विरुद्ध ठगी लिखित कृत्य राज्य विरुद्ध अपराध साङ्गठनिक अपराध नापाया कसुरे मुद्दा दायर यागु ख। मुद्दा सन्हेमा प्रतिवादी सफाई कागुदु सफाई काइपी रामचरण केसी टङ्क कुमार गुरुङ सन्दीप रायमाझी प्रतीक थापा लक्ष्मी महर्जन केशव तुलाधर व आशिष बुढाथोकी पिन्दु।
प्रतिपादित मध्ये पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझी यात्रा राज्य विरुद्ध कसुर ठगी तथा संगठित अपराध जिल्ला अदालतमा दोषी ठहरियागु दुसा, पूर्व गृहमन्त्री खाँड यात्रा थोहे कसुरे मतिया ठहरियागु दु, पूर्व गृह सचिव पाण्डे यात्रा ठगी संगठित अपराध हो, राज्य विरुद्ध कसुरे दोषी ठहरियानागु जिल्ला अदालत या फैसला सन्यथना तगुदु। अध्ययन भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल यता सरकारी कृत्य यागु ठगी हो साङ्गठनिक अपराध कसुरे मतियार देखगु, राज्य विरुद्ध कसुरे न मतियार देखगु दासेन दोषी ठहर यागुदु जिल्ला अदालतमा थो प्रकरण मुख्य योजनाकार थामा सानो भण्डारी व केशव दुलाल यता न सरकारी लिखत कृत्य ठगी व संगठित अपराध हो, राज्य विरुद्ध कसुरे दोषी ठहर यागुदु। थो बाहेक दोषी व मतियार ठहर जुइपिले सागर राय, सन्देश शर्मा, डाक्टर इन्द्रजित राय, विक्रम धैमा, गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन व निरञ्जन कुमार खरेल पिन्दु, मेपी च्यामा प्रतिवादी आतक विश्वना चौगुली, उमिगु मुद्दा मुल्तबिके तया तयागु अदालत सुचा बिगुदु। रौतहट टङ्गडी माई नगरपालिका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव नापा पेमा विरुद्ध निगु करोड ने हेगु लाख ठिभाषिबे उप भ्रष्टाचार यागु दोप दायरियागु दु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश नेपानिया कथा यादव नापा गढी माई नगरपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख शासकीय अधिकृत सुभाष कुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय व भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड या बत्तीस पुतली ये व उगु कम्पनी मुख्य जुया ज्याइमा राधेश विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर प्रतिनिधि सभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसँग राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक दति दफावार सहला जुगुदु समिति हिगो चङ्गु बैठक सांसद मिपु कार्बम, रमेश मल्ल, सीता थपलिया, गुरुप्रसाद बराल, डाक्टर तोसी मकार्की, डाक्टर लेख जोङ थापा पिसा राष्ट्रिय सभासँग संशोधन नापा पारिज वोगु विधेयक नेथङ्गु कथा अपराध अनुसन्धान रिपोर्ट सम्प्रेषण याइगु शब्दचिका अपराध या लिया परीक्षण रिपोर्ट नापा अदालते जक उपलब्ध जिगु व्यवस्था क घ्याता सुझाव बिगुदु। छापा मोरङ सुनसरी महोत्तरी बाह्र चितौन नवलप्रासीसँग बर्ड फ्लू लुए नियन्त्रण वगुदु, पन्छीजन्य थो लुएसँग लिपाङको खुसी, झिन्छको जिल्ला बोलङको खसा पशु सेवा विभाग या कथा यहाँ येल खोप काभ्रे पलाचोके बर्ड फ्लू नियन्त्रण वेफयासँग मधु आदेश पनि अबुख। अमेरिका हर्मु जलमार्ग खेसोङ व्यावसायिक जहाज तथी यागु आक्रमण लिस कथा इरान थिथि थासे त धङ्गु हवाई आक्रमण यागुदु। अमेरिकी केन्द्रीय कमान्ड सेन्ट कम अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग निर्दोष मनुतेता न्याकको व्यावसायिक जाँच दथि यागु हेका या लिसा कथा इरान दथि कार्यवाही न्याकागु धागुदु। इरानी सरकारी संचार माध्यम या कथा अमेरिकी आक्रमणीय केसमा टापु बन्दर अब्बास सिरिक लागा लिचो लागुदु। छर्रा छु मनुतेता खापा जुगु दुसाना मानवीय क्षति गुली जुल धैगु दास सी मधुनी। इरानी उप विदेश मन्त्री अमेरिकी आक्रमण यता वङ्गु ल्या जुगु अमेरिका इरान समझदारी उल्लङ्घन जुगु दासे थुकिया कोछिना या कथा लिसो ख्याचो कथा बिगु धया दिगुदु। इरानी विदेश मन्त्रालय न अमेरिका चिकन निर्यात नपाया अस्थायी प्रतिबन्ध छुट खारेज यागु सम्झौता अख जुगु थुके वासिङटन या अविश्वसनीयता कियङ्गु बिहादिगु दुसा थोए दति कतार साउदी अरेबिया थगु चिकन ट्याङ्कर हर्मुज लागा आक्रमण यागु दाबी यासे थुकिया भाला क्याता इरान याता इनाप यागुदु। कतार क्षेत्रीय सुरक्षा विश्व ऊर्जा आपूर्तिसँग खतरा बोलङ्कीको गतिविधि थत्यान दिकेता इरान नापा माग यागु दुसा साउदी अरेबिया थुकिया त अन्तर्राष्ट्रिय जल यातायात विश्व ऊर्जा सुरक्षा दतिया हेका जुगु थागुदु थुके इरान दासा कतार दोपहाँ स्वीकार यासे थगु समन्वय पिने सञ्चालन जुइगु जहाँ ट्याङ्किङ प्रणालीसँग छेडछाड याइगु जहाँ तेगु झाँकाया जोखिम उपकिगु थागुदु। आकाशय जानकारी इजिप्ट या त बुकुसे साबिक विजेता अर्जेन्टिना फिफा विश्वकप 2026 या क्वार्टर फाइनल थाहा वङ्गु दुसा अमेरिका एटलान्टा स्टेडियम वङ्गु चाने जुगु कास इजिप्ट या त 3-2 गोल बुकुसे अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनल थाहा वङ्गु ख कासाय नापाङ्गु था इजिप्ट कागु ख कासाय झिङ्गागु मिनेटे यासेर इब्राहिम या गोलसँग इजिप्ट नापाङ्गु थाका त तालागु खस कासाय क्विन हेगु मिनेटे मुस्तफा जीको गोल यासे इजिप्ट या 2-0 या सेन लागु थासे ठेङ्कको खस वया लिउ अर्जेन्टिना बानलाक पुनरागमन या त तालागु ख क्रिस्टियन रोमेरो कासे हे गुगु मिनेटे गोल यासे
कासाय ई म यागु खस लियोनेल मेसी लियोनेल मेसिङ कासाया चेन हेगु मिनेटे बराबरी गोल यागु ख वया लियो कासाया निकु हाफे अतिरिक्त इले थेने धुङ्कानी एन्जो फर्नान्डेज निर्णा गोल यासे अर्जेन्टिना या त दुई तिन दुई या क्याकुसा लल हागु ख आ अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनल स्विजरल्यान्ड नापा मिति गु जुगु दुसा वङ्गु चाने जुगु कासा तेके कोलम्बिया या त पेनाल्टी सुट आउटे भुकुसे स्विजरल्यान्ड न क्वार्टर फाइनल थाहा हुने धुङ्क गुदु आ मौसम जानकारी थौदे या कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश या पहाडी ओ तराई लागया छुन थासे मध्य प्रदेश नापा कर्णाली प्रदेश या पहाडी लागया मोह थासे मला नापा लाप्सा तोया वावैगु सम्भावना कुबिगु जुगु दुसा देया पहाडी लागया छगु निगु थासे तस्कौ वावैगु सम्भावना कुबिगु दुसा मध्य प्रदेश नापा लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश या तराई लागया छुन थासे वा नापा फे वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे यसोनि गयाको आज निगुगु फुटी गुइगु डिग्री सेल्सियस दतिको लुगु खस थौनिने यसोनि गयाको आज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोनिगु दुकुमा दु थौ सुते यसोनि गले सुते सिया न्याता इजु या च्यागु मिनेटे लुगु सूर्य शनिल नेता इजु या झिगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन झिताइले नेपाली भाषा समाचार निना दिस शुभ

यी रेडियो नेपाल हो। अब सरस्वती राई दनवारकबाट दनवारी भाषा समाचार सुन। पानी तसो मौसम विज्ञान विभागले आज किछु जिल्लामा आकस्मिक बाधिक मनमनेक खतरा रहलबास्ती होसियारी अपन्यालय अनुरोध गर्ल रचिक कोशी बागमती गण्डकी तसो लुम्बिनी प्रदेशक पहाडी तसो

0: पब्लिकेसन या नाय जनधारणा मासिक या वेक प्रबन्ध सम्पादक न ख कर्ण पोजिटिभ ट्रस्ट या वेक छमा सहजकर्ता कथ वेक थौकने ग्वालिन याना दिगु दुधासा हिमानी ट्रस्ट या वेक ज्याजो कजी स्वयंसेवक न ख वेक यान बाजमेजबी थोदासे दक्ले नाप जी छि त नेनी छि उद्यमी गोबे नासे गोन प्रेरणा जुया चाहिँ छि उद्यमी जुया दिगु ख
1: सुभाडु निसायो लागे जी चाहिँ उडिमी जुयो ढका ट्याबले चाहिँ पहिला जी एकदम सामाजिक रेड क्रसे नसे सामाजिक जाइन्छ जुल यो सोसियल वर्क या न अहिले सामाजिक सोसियल वर्क या अहिले ठो जीसँग चाहिँ यहाँ ठो छेयोपट्टि हरेक भुटु च्याकेट ढ्याम्मालाई चिन्ने भएपछि ढ्याबले चाहिँ झि त मरेक मगाऊ यो लजगा जुल अहिले लजगा मरु झिठा स्वनिगले ढ्याबले झिप्री ठो नेपाल मण्डले लजगायो यो कुहे चाहिँ मोजक अप अछि अवसर डुजुल एजुबले चाहिँ अहिले ठो सामाजिक ज्याया यहाँ चाहिँ ठो मजिल ठो छौ चाहिँ उद्यमशीलता यो तालिम क्यामाल यो हिसाबमा चाहिँ जी चाहिँ निनी कनियाना तालिम कया अहिले थुकी चाहिँ जी ठम ठस भने स्वरूपले नि ढाकायु ज्या सूर्यानु जुल
0: अहिले
1: ढाकायु काप चाहिँ जी न्याना हया ठमेसँग चानाए उकेट छौ क्रिएसन याना चाहिँ जी नुनु डिजाइनर चाहिँ जी याना ठो ज्याज सूर्याना अहिले ठुके चाहिँ जी छौ ट रमु ज्या तया ठुके त उले ज्या याना जी ज्याजो चाहिँ ठो बजारले चाहिँ सामान त चाहिँ यानु जुल तर जिउ पला चाहिँ स्वरूपले न्याबले एकदम ठो उबले चाहिँ मगा मचा मिसा पिनसँग या टका एकदम हेसै छु यपा यपा यही अयो हिसाबमा चाहिँ ज्याचौँ अवसरे चाहिँ जी चाहिँ एकदमै नुगुले चाहिँ द क्वे खैट ओ मेपिनसँग म आमरो खलाउट चाहिँ ऊ ट्यागेन ऊ खैट वास्तवमा यसै निहने बढे जु जुल ऊ अवस्था चाहिँ खजी ज्यासुरु हेर्नु
0: हजुर ढाबले चाहिँ अयोपट्टि छुन लजगायो होटा चुमलागो हुनिए चाहिँ ठोज्या न्याका दिएको
1: जित होटा चुमलाउ म हो जित चुला तर मेपी जी झित केपी मस्त खम्ब्ले केपी खम्ब्ले इम त होटा चुमलना इमुपट्टि छेयोपट्टि दैनीय स्थिति उखना चाहिँ झित ट ठटला ड्य नगाएको झित ब्याटौडु जिउ जी यान्छुनेडु जी संसार छेटेन यान्छुन खट सामाजिक तर उ केन्जको म जु कारण चाहिँ जी चाहिँ मेपिन्ट नसित लजगा बिउ लागि चाहिँ ग्वालियामा त्यो हिसाबमा जी निन कुनिएन अहिले थमेसन टुन सौपिटै जाइटेन जी इम त सेना याना वयु खजी
0: ढाबले चाहिँ कापयु थो ज्या या न्ह चाहिँ छि चुचुके चाहिँ इन्भल्भ ज्या दिगु
1: जी कापयु ज्या या न्ह चाहिँ जी पहिला पहिला चाहिँ जी ठो रेड क्रस जुल रोटरी क्लब एजुल लाइन्स एजुल ह्युमेन ट्रस्ट एजुल अठो साङ्गायो टर गममा माड्यो
0: हजुर
1: ऊ प्रोजेक्ट जी यान्छुन जुल अहिले ऊ नाप नाप ए योको मैला टे नाप चाहिँ छौ सामाजिक अभियन्ता यो यही हिसाबमा चाहिँ ज्या यान्छनु खजी
0: हजुर ढाबले चाहिँ छि चाहिँ उद्यमी जुयादिल छि त चाहिँ छि धाइदी अनुसारसँग म्योपमु दुःख स्वयम्फुगु हुने विशेष त मिस देउपट्टि मिसुपुगु स्वयम्फुगु हुने चाहिँ थो ढाकायो काप न्याना चाहिँ छि उद्यमी जुयादिल ढाबले थो ढाकायो कापले चाहिँ छि छुछु देखा दिगु कथा चाहिँ थो उद्योग चलेन
1: खेटो चाहिँ जी ठो झन्डै झन्डै 2071 सालले चाहिँ जी सुरु यानु जुल उसले चाहिँ जी सुरु यानु जी चाहिँ खास मेन चाहिँ झुप्टी आज झुप्टी तातुना धेरै चाहिँ झिठ्या नेपालले झिठ्या सोनिगले डेकोप्टी चाहिँ छुन सामान त चाहिँ झिसँग चाहिँ पिनी छे फेक चाहिँ क्वालिटी डेकमा त्यो हिसाबमा चाहिँ जी चाहिँ पहिला चाहिँ ढाकायुका प न सूर्यानु जी चाहिँ ऊ ढाकायुका प चाहिँ गब्ले ठानकोटे गब्ले चाहिँ लुबी थासँग गब्ले ठनिए सटुङ्गले ठनठनिए झिठ्या केफली पाङ्गाए ठाउजुल ऊ कापट कया चाहिँ जी चाहिँ नोक्रेसँग त चाहिँ सामान त डेकियो जुल मलाई तर लिपा चाहिँ जी बल्खुई चौडो ओडान ठाउपट्टि फ्याक्ट्री त्यहाँ ठमेसँग सूर्यानु अहिले अहिले 2072 सालले भूकम्प वबले चाहिँ जी त एकदमै शास्ती जुल छेट बिछेटे जुबले जी चाहिँ अहिले ऊ ज्याइट हाक्न न्याउने चाहिँ नापठेन टो या मफ्ट बजार न डको काल मलाई व्यवसाय न डट डकुस्त लजगा न डट तर ऊ लजगा न डु हिसाबमा चाहिँ 72 सालमा बाम्ला के लिचो होला अलि जी ठ न ठय डको छेन्डु न जी ठक दुपे तहस नहस जुन जुन जुल नि संसारे सिडुए खख जुबले चाहिँ जी ओ नापै उठे सुरुवातलाई या मफ तर उकी चाहिँ जी के त म यहाँ कालिपा अहिले म यहाँ चाहिँ अहिले जी 77 जिल्ला यु ए वना चाहिँ जी महिला टेपटी अवस्था जस्तै जेले

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झासे सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। सरकार गोविंद बहादुर कार्की के नेपाल सरकार के मुख्य सचिव पद में नियुक्त कलक है। मंत्री परिषद के आई बैसल बैठक से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के सचिव कार्की के मुख्य सचिव में नियुक्त करवाक निर्णय कैने बैठक पश्चात सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरिल के जानकारी दिलन। अना मंत्री परिषद बैठक से गेट अस्पताल कैलाली के शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में संचालन करवाक लेल स्वीकृति प्रदान कलक। अना का बैठक से काठमांडू उपत्यका के विकास प्राधिकरण के विकास आयुक्त में काठमांडू के सूरज साके के नियुक्त करवाक विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन अनियमावली 2083 आ शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तैयारी कक्षा संचालन व्यवस्थापन नियमावली 2083 स्वीकृत करवाक लगात निर्णय सबके ने शिक्षा मंत्री पोखरिल के जानकारी दिलन। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक बृहस्पति दिन बैसत 15 मिनट के लिए स्थगन भेल बैठक सूचना साइट का काल धर के लिए स्थगित भेल अछि। विशेष कारणवश स्थगित भेल आजुक बैठक अखार 25 गते बृहस्पति दिन के 11 बजे बैसत से सभामुख डोल प्रसाद अर्याल निर्धारण कैने संघीय संसद सचिवालय द्वारा जारी सूचना में उल्लेख अछि। ऐसा पहिने प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक तेसर संशोधन विधेयक 2083 आ पर्यटन विधेयक 2082 के दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समिति में पठायल गेल छ। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले प्रस्तुत केने नेपाल राष्ट्र बैंक तेसर संशोधन विधेयक आ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़क राज पौडेल प्रस्तुत केने पर्यटन विधेयक सभा सर्वसम्मति से स्वीकृत कलक। बैठक में प्रतिनिधि सभा के सचिव प्रकाश अधिकारी विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश जानकारी करौलन। ऐसे पहिने बैठक के विशेष समय में नेकपा एमाले के संसदीय दल के उपनेता पद्मा कुमारी आर्याल सरकार के 100 दिन मनाब रहल देखल गेल शासकीय अभ्यास से सुशासन विकास नागरिक स्वतंत्रता आ मानवाधिकार के विश्वव्यापी मानक सबके अवस्था चिंतित बनौने बतौलन। नेता आर्याल संविधान संशोधन के विपक्ष में नहीं रहल बावजूद संविधान के आधारभूत विषय के ऊपर नीचा नहीं कह सकै छी आ संविधान निर्माण संलग्न राजनीतिक दल सबके सहकार्य आ राष्ट्रीय सहमति से मात्र संविधान संशोधन करबाक चाही से स्वयं सबके मान्यता रहल स्पष्ट कलन। ओ बस्ती से हटा कर होल्डिंग सेंटर रखने सुकुमवासी सबके ओत से हटा कर असमंजस में धैने कहित विरोध सेहो कलन। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उद्योग व्यवसाय लगानी वातावरण तथा आर्थिक सुधार संबंधी विषय में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि संग विचार विमर्श कलने। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में आई भेल विचार विमर्श में प्रधानमंत्री शाह देश के आर्थिक गतिविधि के चलेमान एवं सशक्त बनाव वाला उद्योग व्यवसाय संचालन के थप सहज बनेबाक लगानी मैत्री वातावरण निर्माण करबाक नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेबाक निजी क्षेत्र के मनोबल अभिवृद्धि करब जेहन तथा रोजगारी सृजना आ उत्पादन वृद्धि करय वाला विषय में विस्तृत विचार विमर्श कलने। एहि अवसर पर प्रधानमंत्री शाह देश के आर्थिक विकास लगानी विस्तार रोजगारी सृजना उत्पादन वृद्धि में निजी क्षेत्र सरकार के महत्वपूर्ण साझेदार रहल चर्च करत उद्योगी व्यवसायी भोग रहल व्यवहारिक समस्या समाधान करबाक लेल सरकार तैयार रहल बतौलन। ओ उद्योग तथा निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माणक लेल आवश्यक नीतिगत कानूनी तथा प्रशासनिक सुधार के प्राथमिकता के संग आगू बढ़ाल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। एहि क्रम में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि सब उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन लगानी विस्तार नीतिगत स्थिरता सेवा प्रवाह में सरलता तथा सरकार निजी क्षेत्र बीच नियमित आ परिणामुखी संवाद के आवश्यकता के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत कने छलित। प्रधानमंत्री शाह प्राप्त सुझाव के गंभीरता पूर्वक लेत संबंधित निकाय मार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधार के कार्य आगू बढ़ायल जेबाक बतौलन। ओ आर्थिक सुधार के अभियान में सरकार निजी क्षेत्र संग सहकार्य करित आगू बढ़बाक स्पष्ट कलन। एहि विचार विमर्श में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ उद्योग समिति के सभापति उज्जवल कुमार श्रेष्ठ नेपाल उद्योग परिसंघ के निवर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल आ महानिर्देशक डॉक्टर घनश्याम ओझा नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा के सहभागिता में रहल प्रधानमंत्री के सचिवालय जनौलक।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में सांसद सब सुकुम्बासी सब के मानव अधिकार संरक्षण और संक्रमण कालीन न्याय के प्रभावकारी बनाल जवाक चाही बतौलने छ। समिति के आयसिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद सब सुकुम्बासी सब के उचित व्यवस्थापन, बाल विवाह न्यूनीकरण और यौन जन्य हिंसा पीड़ित के न्याय के पहुँच सुनिश्चित करवाक लेल नीतिगत सुधार आवश्यक रहल बतौलन। सांसद सब घरेलू हिंसा, बाल श्रम, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा में अवरोध तथा विभिन्न प्रकार के छुआछूत के न्यूनीकरण और मानव अधिकार हनन भेल पीड़ित के सरल न्याय के पहुँच सुनिश्चित करवाक लेल सरकार आवश्यक कदम उठावक चाही से जोर दिलन। बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तप बहादुर मगर मानवाधिकार संरक्षण के लिए आयोग के वित्तीय स्वायत्तता, मानव अधिकार संबंधी ऐन में पारदर्शिता, सरकारी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा दुर्गम क्षेत्र के पूर्वाधार विकास आवश्यक रहल बतौलन। अहिना आयोग के सचिव मुरारी प्रसाद खरेल मानव अधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक कानून निर्माण, उद्योग के प्रतिवेदन पर सांसद सब के विचार विमर्श तथा आयोग और संसद बीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहल प्रति जोर दिलन। बैठक में आयोग के सदस्य सब विदेश में रहल श्रमिक आ विद्यार्थी सब के मानव अधिकार संरक्षण आ सुरक्षा में सरकार के विशेष ध्यान देवाक चाही बतावत ए विषय में ध्यान आकर्षण करौलन। मध्य प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो गृह जिला सरलाही में मंगल दिन से होटल तथा नाश्ता घर सब के अनुगमन शुरू कलने। मंत्री महतो स्थानीय प्रशासन, प्रहरी या प्राविधिक टोली सहित लालबंदी, हरिवन, नया रोड, बागमती, बढ़ातवा लगाए क्षेत्र के होटल, नाश्ता घर और बर्गर हाउस के भानस घर में पहुँच कर अनुगमन कलने। वो स्वयं दिन भर अनुगमन में सहभागी भव मंगल दिन साँझ धर 3 दर्जन से अधिक होटल के निरीक्षण कलन। अनुगमन के क्रम में अधिकांश होटल गुणस्तरहीन खाना बिक्री कर रहा, खाना बनाव वाला भानस घर में सर सफाई के ध्यान नहीं देने तथा अस्वस्थकर तरीका से खाद्य बिक्री सामग्री प्रयोग कर रहा भेटल गेल। अहिना मंत्री महतो ई सब के जानकारी दिलन। उपभोक्ता के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़े वाला गतिविधि देख करने भेटलाक बाद 1 दर्जन जतेक होटल आ मिठाई दुकान के नगद जरिमाना कैल गेल। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय धनसा के राम जानकी मंदिर लगायत 72 जनकपुर क्षेत्र अंतर्गत रहल गुठी जमीन के संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाव 9 सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन कलक। मंत्रालय 72 जनकपुर क्षेत्र अंतर्गत जनकपुर उप महानगर पालिका भीतर रहल पोखरि, पोखरि के मोहार, राम जानकी मंदिर लगायत प्रमुख मठ मंदिर तथा गुठी जमीन के संरक्षण और व्यवस्थापन के लिए बीतल में तैयार भेल प्रतिवेदन के कैनमेन के तीव्रता देवा आई ई समिति गठन कलक। गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय के गुठी प्रशासक ध्रुव गिमरी के संयोजकत्व में समिति गठन भेल। समिति के जिला प्रशासन कार्यालय धनसा के पहाय प्रमुख, सहायक प्रमुख जिलाधिकारी, जिला समन्वय समिति धनसा के जिला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग के निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनसा के प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनसा के प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनसा के कार्यालय प्रमुख लगायत प्रतिनिधि सब सदस्य रहल। समिति 72 जनकपुर क्षेत्र अंतर्गत रहल पोखरि, पोखरि के मोहार, राम जानकी मंदिर लगायत प्रमुख मठ मंदिर आ गुठी जमीन में भेल अतिक्रमण के हटाकर संरक्षण तथा व्यवस्थापन करबाक जिम्मेवारी देने मंत्रालय जनौलक। अहिना मौसम समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग आई के जिला में आकस्मिक बाढ़ के मध्यम जोखिम रहल कहे सतर्कता अपने वाले आग्रह कलक। कोसी, बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी आ तराई भूभाग तथा मध्य प्रदेश के 1-2 स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल विभाग जनौलक। विभाग के हिसाब से अखन देश भर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल आ मानसून के न्यूनचापी रेखा नेपाल के पूर्वी भूभाग दिस सरदर से दक्षिण में तथा पश्चिमी भूभाग से सरदर स्थान के लगपास अवस्थित रहल। विभाग के बाढ़ विद विनोज पराजुली, आईलाम, झापा, तेरहथुम, पांचधर, धनकुट्टा, सप्तरी, सुनसरी, मोरंग, डोटी, डरेलधुरा आसपास के जिला में भक बहवला छोटी नदी के बहाव उल्लेख्य बढ़त आकस्मिक बाढ़ के जोखिम के संभावना रहल बतौलने। अब खेल समाचार। इजिप्ट के पराजित करित साबिक विजेता अर्जेंटीना फीफा विश्वकप 2026 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कलक। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में आई भेल खेल में इजिप्ट के 3-2 गोल से पराजित करित अर्जेंटीना
क्वार्टर फाइनलमे प्रवेश कयलक अछि। खेलके पहिल अग्रता इजिप्ट लेने छल। खेलके 15 मिनटमे यासिर इब्राहिम गोलसँ इजिप्ट पहिल अग्रता लेने छल। खेलके 67 मिनटमे मुस्तफा जीको गोल करैत इजिप्टके 2-0 की अवस्थामे पहुँचौलनि। ओहिके बाद अर्जेन्टीना शानदार पुनरागमन कयलक। क्रिस्टियानो रोमेरो खेलके 79 मिनटमे गोल करैत अन्तर कम कयलनि, तँ लियोनल मेसी खेलके 83 मिनटमे बराबरी गोल कयलनि। ओहिके बाद खेल दोसर हाफमे अतिरिक्त समयमे प्रवेश कयला बाद एन्जो फर्नान्डेज 90+3 मिनटमे निर्णायक गोल करैत अर्जेन्टीनाके 3-2 गोलसँ जितौलनि अछि। आब अन्तर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरानसँग भेल युद्ध विराम आब समाप्त भेल घोषणा करैत तेहरानसँग थप कोनो समझौता करबाक इच्छा नहि रहल बतौलनि अछि। अमेरिकी सेना ईरानमे रातो रात व्यापक आक्रमण कयलाक बाद एहिके जवाबमे ईरान खाड़ी क्षेत्रमे रहल अमेरिकी सैन्य आधारके लक्षित कऽ आक्रमण केने दावी सार्वजनिक भेल समय ट्रम्प अभिव्यक्ति आयल अछि। टर्की के राजधानी अंकारा में रहल नाटो शिखर सम्मेलन के क्रम में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत ट्रम्प ईरान संग के युद्ध विराम आब अपन दृष्टि में समाप्त भ चुकल स्पष्ट कयलनि। ओ ईरानी नेतृत्व पर कड़ा टिप्पणी करैत तेहरान संग वार्ता के कोनो औचित्य नहीं रहल धारणा रखलनि। ट्रम्प के युद्ध विराम समाप्त भेल घोषणा पश्चात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मूल्य करीब 5% से बढ़ल अछि, तहिसँ मध्य पूर्व के पछिला तनाव विश्व ऊर्जा बाजार में सेहो असर पारा लागल संकेत कयलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आर्थिक सुधार अभियान में सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जताई प्रतिबद्धता। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में गोविंद बहादुर कार की नियुक्त। निजामती कर्मचारी अस्पताल के 8 कर्मचारियों के खिलाफ लगभग 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने उद्योग, व्यापार, निवेश, वातावरण और आर्थिक सुधार से जुड़े मुद्दों पर निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। आज प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने देश की आर्थिक गतिविधियों को गति देने और उन्हें सशक्त बनाने, उद्योग व्यवसाय संचालन को अधिक सुगम बनाने, निवेश अनुकूल माहौल तैयार करने, नीतिगत एवं प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने, निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाने तथा रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि के विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि देश के आर्थिक विकास, निवेश विस्तार, रोजगार सृजन और उत्पादन वृद्धि में निजी क्षेत्र सरकार का महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने कहा कि उद्योग व्यवसायियों की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उद्योग और निजी क्षेत्र के अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत, कानूनी और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक सुधार के अभियान में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बैठक से प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित निकायों के माध्यम से आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बैठक में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने उद्योग व्यवसाय को प्रोत्साहन, निवेश विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा विवरण को सरल बनाने तथा सरकार और निजी क्षेत्र के बीच नियमित एवं परिणाम उन्मुख संवाद की आवश्यकता पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। सरकार ने गोविंद बहादुर कार्की को नेपाल सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव गोविंद बहादुर कार्की को मुख्य सचिव नियुक्त करने का निर्णय किया। ये जानकारी बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। मंत्रिपरिषद बैठक ने कैलाली स्थित गेटा अस्पताल को शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में संचालित करने की भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा बैठक ने काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण के विकास आयुक्त के पद पर काठमांडू के सूरज शाखे की नियुक्ति, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम संचालन एवं नियमन नियमावली 2083 तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण एवं तैयारी कक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2083 को मंजूरी देने सहित अन्य निर्णय भी किए। ये जानकारी शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल राष्ट्र बैंक तृतीय संशोधन विधेयक 2083 और पर्यटन विधेयक 2082 को दफावार विचार विमर्श के लिए संबंधित समितियों में भेजा है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत नेपाल राष्ट्र बैंक तृतीय संशोधन विधेयक और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड़कराज पौडेल द्वारा प्रस्तुत पर्यटन विधेयक को स्वीकृत किया गया। बैठक में प्रतिनिधि सभा के सचिव प्रकाश अधिकारी ने विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से प्राप्त संदेश की जानकारी दी। बैठक के दौरान सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने नेकपा एमाले के सांसद राजेंद्र राय के वक्तव्य को संसद की कार्यवाही से हटाने का निर्देश किया। सभामुख अर्याल ने सांसद राय की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्हें मर्यादा में रहकर बोलने का निर्देश दिया और आगे बोलने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद एमाले के सांसद विरोध में अपनी सीटों से खड़े हो गए। सभामुख ने कहा कि कुछ सांसदों ने बोलते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे सभामुख के पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा की सांसद ज्वाला संगरौला ने भी सांसद राय की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उसे संसद की कार्यवाही से हटाने की मांग की। सांसद राय की टिप्पणी के बाद सदन में विवाद उत्पन्न होने पर सभामुख ने पहली बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बाद में शुरू हुई दूसरी बैठक में उन्होंने सांसद राय की पूरी टिप्पणी को कार्यवाही से हटाने का निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होते ही आज भी विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह द्वारा नेपाल भारत सीमा संबंधी दिए गए बयान को वापस लेने और उसमें संशोधन करने की मांग करते हुए विरोध में खड़े हो गए। बैठक में सांसदों ने देश के समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। इसी बीच 15 मिनट के लिए स्थगित की गई प्रतिनिधि सभा की दूसरी बैठक को विशेष कारणों से निर्धारित समय पर संचालित नहीं किया जा सका। इसके बाद सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने बैठक को सूचना जारी कर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। संघीय संसद सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा जारी सूचना में इसकी जानकारी दी गई। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने धनुषा स्थित राम जानकी मंदिर सहित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र की गुठी भूमि के संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाने के लिए गुठी संस्थान के प्रधान कार्यालय के गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरे की संयोजकत्व में 9 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। मंत्रालय के अनुसार समिति को बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तालाबों, उनके किनारों, राम जानकी मंदिर सहित प्रमुख मठ मंदिरों तथा गुठी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर 15 दिनों के भीतर प्रगति प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। समिति उच्च स्तरीय कार्यदल 2062 की रिपोर्ट, सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी भूमि संरक्षण संबंधी जांचबूझ आयोग 2076 की रिपोर्ट तथा गुठी भूमि से संबंधित अन्य प्रतिवेदनों में उल्लिखित सिफारिशों और कार्यों को भी लागू करेगी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने निजामती कर्मचारी अस्पताल नया बानेश्वर काठमांडू की फार्मेसी यूनिट इंचार्ज एवं फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुंगाना सहित 8 लोगों के खिलाफ 2,91,34,000 रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार फार्मेसी अधिकृत दीपा ढुंगाना के अलावा फार्मेसी सहायक लवेंद्र कुंवर, वरिष्ठ फार्मेसी सहायक दिनेश पंत, फार्मेसी सहायक दीपक सापकोटा, स्टोर कीपर एवं वरिष्ठ फार्मेसी सहायक विनोद पोखरेल और शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक केशव राज न्योपाने और संदीप तिवारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्री मामले में नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अनुमति दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौड़ेल और विदुर कोरला की पीठ ने आज ये आदेश जारी किया। सिंगदरबार स्थित सरकारी कार्यालयों में शारीरिक रूप से असक्त वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग सेवाग्राहियों तथा सरकारी कर्मचारियों की सुगम आवाजाही के लिए व्हीलचेयर और सहायक सेवा शुरू की गई है। सेवा का उद्घाटन करते हुए मुख्य सचिव सुमन राज अर्याल ने कहा कि अब सार्वजनिक सेवाएं लेने वाले नागरिकों और कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों को शारीरिक स्थिति के कारण किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। धरान स्थित वीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान से 10 बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के प्रमुख केशव कुमार थेवे के अनुसार इन लोगों पर प्रतिष्ठान में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को विभिन्न निजी मेडिकल स्टोरों से सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने का लालच देकर अवैध कमीशनखोरी करने का आरोप है। गत 21 आषाढ़ को गृह मंत्री सुदन गुरुंग और स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का निरीक्षण करते हुए अस्पताल परिसर में सक्रिय बिचौलियों, अनियमितताओं और मरीजों के साथ होने वाली ठगी पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए युद्ध विराम को समाप्त घोषित करते हुए कहा है कि अब अंतरिम शांति समझौता प्रभावी नहीं रहा। तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं किया और आगे बढ़ने का फैसला तेहरान को करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि ईरान चाहे तो भविष्य में बातचीत का रास्ता अब भी खुला है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और ईरान को कड़ा संदेश देना था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आर्थिक सुधार अभियान में सहयोग के साथ आगे बढ़ने की जताई प्रतिबद्धता। नेपाल सरकार के मुख्य सचिव के रूप में गोविंद बहादुर कार की नियुक्त। निजामती कर्मचारी अस्पताल के 8 कर्मचारियों के खिलाफ लगभग 3 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा मामला दर्ज। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: धेरै वर्षा भइरहेको बेला पहिरो जान सक्ने भिरालो ठाउँमा नबस्नुहोस्। आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण हेर्नुहोस्। सुरक्षित रहन मौसम सम्बन्धी सूचना जानकारी नियमित लिने गर्नुहोस्।
6: समयमै सावधानी अपनाई हानि नोक्सानी हुनबाट जोगिनुहोस्। बाढी पहिरोबाट बचौँ, सुरक्षित नेपाल बनाऊ।
5: रेडियो नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।